0: प्रकरण जे
1: एक एक जुगती अजमा के वेख लो गुरु के हाथ बने जाने बने जाने तेरी झोली किवें भरनी उठो चार बजे गुनो आटा अपने हथी वाहगुरु जपदे बनाओ कोई ना कोई सब्जी बनाओ प्रशादे जपदे लै जो सत अठ बजे बाबा दीप सिंह के दर के अंदर जिथे संगत मगर लंगर छकदी है छकाओ संगतां नूं प्रशादे वेखो बाबा दीप सिंह जी कहणगे अज इहनूं खाली नहीं बोलना अज इहने मेरी संगत की खुशी लै ली सुनियो मां अजमाए हो अज पंजवीं जुगती नदर मिलदी किवें है चार जुगतियां दी सेवा हो चुकी पंजवीं जुगती नदर उनू मिलदी जे जेड़ा अपनी जिंदगी दे विच गुरमत ना छड्डे गुरमत ना छड्डे हर चीज विच तोले गुरमत की कहंदी उत्ते गुरमत नूं रखे ओ भी प्रतख नजर प्राप्त करे हर चीज विच रिश्ते विच पहरावे विच विहार विच जरूर जदों तुहाडे मसला बने ते गुरमत उत्ते रखा कोई तुहानूं एजेंट कवे तेरा बाहर का वीजा लवा देने केस कटा सत सत आवाज गुरमत गुरमत की कहती जो गुरमत उत्ते रखोगे ते गुरु के प्यारे सब कुछ लग जाएगा।

विचारे सोई सोई सुबह काटी शहर सचा सती नई ऐसी होती जाए न जाती रचना जन चाई रंगी रंगी पाती पर

जिन हर हर भगत राम न पाया चेताधीन जनता से जो सतगुर शरण संत नहीं आए सिद्ध जीवे सिद्ध जीवा से जिन हर संत सतगुर संत पाई सिंह मस्तक से

तू ठाकर तुम पहला थियो तन सब तेरी रात तुम मात पता हम बात तेरे तुम्हारी कृपा में पूछ मेरे कोई न जाने तुम्हारा अंत उसके से उसका भगवान।

0: हस हस तोड़ा दिया हस हस तोड़ा दिया खुदा नाल होण गला
1: ओ हस हस तोड़ा दिया हस हस तोड़ा दिया खुदा नाल होण गला
0: हस हस तोड़ा दिया मैं हस हस तोड़ा दिया खुदा नाल होण गला
1: हस हस तोड़ा दिया खुदा नाल होण गला उना दी प्रीत विच उना दी प्रीत विच रोग कोई पाए ना उना दी प्रीत विच रोग

सरदार भगत सिंह कहन लग्या, नौजवानों दसो आपो अपने दने दलील आए दसो कि तुसी की बनना चाहने हो। कोई नौजवान कहंदा है कि मैं ता थानेदार बनना चाहना। कोई कहंदा मैं ता इस तो उच्चा औहदा जिहड़ा आई जी बनना चाहना। कोई मुंडा कहंदा मेरा तो सियासत बनी ध्यान है बहुता, मैं चाहना मैं MLA बना, चीफ मिनिस्टर बना, प्रधान बना। सरदार ऊधम सिंह कहंदे ने सरदार भगत सिंह नूं पुछण लगे, भगत जिया तू दस गा तेरी दलील की है, तू की बनना चाहना। ए कहंदा मैं ए बनना चाहना कि मेरा देश आजाद होवे, ते मेरे घर विच भावे फांसे दे तंदी आ जावे। बस मैं ए बनना चाहना। सारा ने कहंदे इनकलाब जिंदाबाद दे नारे लाए, जंकारे छड़े। फिर कहंदे हुण फरोजाबाद विच इक मीटिंग करनी आ, सारे नौजवान अजे सब नू गुप्त सुनेहे आ जिहड़े ओह घल दिओ, उसे फरोजाबाद मीटिंग विच मते पकाए जाणगे, प्रधान जी दे चोण होवे। इन्नी इन्नी गल कह के नौजवान आपो अपने घर चले गए। तारीख आ जिहड़ी आ नियत हो गई, सरदार भगत सिंह आपदे घरे गया। मां कहण लगी पुत्र मैं तां उड़ीक रही सी तैनू वी हुण छुट्टियां हो गईयां कालजां नूं, ते मैं आपदे पुत्र दा विआह जिहड़ा ओह वेखां। मैं सोच रही सी ते चंगा हो गया पुत्र, तू घरे आ गया, ते हुण मैं तेरे नाल सलाह करनी आ वी कोई कुड़ी आ जिहड़ी असीं भाली जावे, जिहड़ी तेरे भी पसंद होवे मेरे भी पसंद होवे। सरदार भगत सिंह कहण लग्या, मां मैं कुड़ी दी चोण आ जिहड़ी ओह कीती नहीं है। मां कहण लगी पुत, ते तू ता फिर ओही गल बचेते ना, अपनी मर्जी कीती है, मेरी मर्जी ता ना होई, मैं तेरी मां है। कहण लग्या, मां मैं ऐसी कुड़ी आ जिहड़े ओहदे चोण कीती है, ते जेड़ी तेरे भी पसंद आ जाऊगी, ते मेरे ता पसंद है ही ना। कहण लग्या, कहण लगी मां पुत्र ओह किथे है कुड़ी, किहड़े पिंड विच है, ते तू दस मैनू असी जाके वेख आईए। ए कहण लग्या, मां जदों मैं घरे आया ना दूसरी बारी, फिर तैनू मैं कुड़ी दी दस भी पा देऊंगा, ते जे मैं ना आया ते कुड़ी है तैनू, तैनू कुड़ी भी नहीं दसनी। कहनी पुत तू ना क्यों ना आया, तू छेती छेती घरे आ, मैं चाहनी हां वी तेरा विआह मैं जोंदे जोंदे वेख जावां। ला मां नूं मत्था टेक के कहने चले गए आ, ते फरोजाबाद विच जाके मीटिंग कर लगे आ। आपां ढाडी जत्थे पासे सुन लगे आ, जिन्हां दे मन विच देश नूं आजाद करवाउण दे तड़प से। देश आ जिहड़ा ओह कोई चरखे दे भूक दे नाल नहीं चलिया गया। इथे गांधी ने चरखा कत्या, ते कहंदे ने जदों देश आजाद होया रेडियो तो आखी जा करना, क्या करे हर कुड़ी आ जेड़े ओ कुकड़ियां पाले, ते हर कुड़ी आ जेड़े ओ चरखा कत्ते, बंदे भी चरखा कत्तन। गांधी साहब कहन लगा, मैं भी चरखा कत्ता। मां ठीक है, जदों कितें पाकिस्तान ना हो गए ना दो हाथ, ते कुड़ियां नूं आप जो भी आंडे चलाई चलाई जाणगियां, मुर्गियां पालन नूं कहने आ तुसी, ते गांधी दे गलोटे आ जिहड़े ओह चलाई जाणगियां। ला भरा देश आजाद किवें होया, ओहदे लई सिखां ने कुरबानियां जिहड़ियां हिंदू सिख मुसलमान वीर उन्हां ने सानियां कुरबानियां जिहड़ियां कीतियां सन, उस मीटिंग दे विच किहड़े किहड़े मते पकाउण लगे आ, लो सुणा ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਥਾ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ।

रंगी कारो करे तेरा काज सब सवार ना सब नागला सब रात तो अमीर तो घूमो सारे कहीं नानक मन में सदा रोड़ नाले सादे

दुनिया का कोई ना ठिकाना अम्मीए खोरे के तो आए किसे जाना अम्मीए कोई ना ठिकाना अम्मीए खोरे के तो आए किसे जाना अम्मीए समा का तो कीमती गवा में तू पाके खैर जोगी।

ओ तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत मैं दीवाना भया अतीत कर कासा दर्शन की भूख मैं दर मांगो नीता नीत तौ दर्शन की करो समाए मैं दर मांगत भीख्या पाए रहाउ केसर कुसुम मृग मैं हरना सर्ब शरीरी चढ़ना चंदन भगता जोत अनेही सर्वे परमल करना के पट भांडा कह ना कोई ऐसा भगत वर्ण मह होई तेरा नाम निवे रहे लिव लाए नानक तिन दर पीछिया पाए पलंग महला पहला घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद इहो तन माया पाया प्यारी लीतड़ा लभ रंगाई मेरे कंतना पावे चोलड़ा प्यारी क्यों धन सीजे।

जाए पुछो सुहागनी वाहै, किन्नी बाती सहु पाई, जो किस करे सो भला कर मानिए, हिकमत हुक्म चुकाइए, जां कै प्रेम पदार्थ पाइए, तौ चरणी चेत लाइए, सहु कहे सो कीजे, तन मनो दीजे, ऐसा परमल लाइए, केव कहे सुहागनी पैने, इनी बाती सहु पाइए, आप गुआइए ता सहु पाइए, और कैसी चतुराई, सहु नदर कर देखे सो दिन लेखे, कामन नौ निद पाई, अपने कंत प्यारी सा सुहागन, नानक सा सब राई, ऐसे रंग राती सहज की माती, ऐनस पाए समाणी, सुंदर साए स्वरूप विचखण, कही ऐसा सियाणी, तलंग महला पहला, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसरा करी ज्ञान वे लालू, पाप की जांज लह काबलों ताया, जोरी मंगे दान वे लालू, शर्म धर्म दोए चप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान वे लालू, काजिया बामणा की गल थकी, अगद पढ़े शैतान वे लालू, मुसलमानिया पढ़े कतेबा, कष्ट में करह खुदाई वे लालू, जात सुनाती होर हिंदवानी।

मास पूरी विच आख मसोला जिन उपाई रंग रवाई बैठा वेखे वख अकेला सच्चा सो साहिब सच तपावस सचड़ा न्याओ करेग मसोला काया कपड़ टुक टुक होसी हिंदुस्तान संभाल सी बोला आवन अठतरे जान सतानवे होर पी उठती मर्द का चेला सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी सच की बेला तलंग महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सब आए हुक्म खसमा हो हुक्म सब वर्तनी सच साहिब साचा खेल सब हर तनी सलाह हो सच सब ऊपर हर तनी जिस नाही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहाओ पौन पानी धरती आकाश घर मंदिर हर बनी विच वरतै नानक आप झूठ कहो क्या गनी तलंग महला चौथा नित निफल कर्म कमाए बपावै दुरमतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी सहसार ना चेतै हर नाम हिनम है बिनतै सब झूठ मेरे मन त्याए राम रहाउ सावेला चित ना आवै जित आई कंटक काल ग्रसै तिस नानक लई छडाई जिस कृपा कर हिरदय वसै तलंग महला पंजवा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद खाक नूर करदम आलम दुनियाई असमान जिमी दरख्त आब पैदाइश खुदाई बंदे चश्म दीदं फनाई दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफल हवाई रहाउ गैबान हैवान हराम कुस्तनी मुर्दार बखोराई दिल कब्ज कब्जा कादरू दूजक सजाए वली नियामत बिरादरा दरबार मिलक खानाई जब अजराइल बस्तनी तब चेकारे बिदाई फुआल मलूम कर दऊ पाक अल्लाह बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा तलंग घर दूजा।

सभी ऊपर पार ब्रह्म दातार, तेरी टेक तेरा आधार, रहाऊ है तू, है तू होनहार, अगम अगाध ऊंच अपार, जो तुझ सेव है तिन पौ दुख नाही, गुर प्रसाद नानक गुण गाही, जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप, सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक कर्म प्राप्त होए, जिन जपया तिस कहो बलिहार, तिस कै संग तरै संसार, कहो नानक प्रभ लोचा पूर, संत जना की बांछो तूर, तलंग महला।

आखेगा तिरजनहार जिन पादाइश तू किया सोई दे आधार जिने उपाई मेदनी सोई करदा सार कट

एक तू ही सब खलक ही ते पाक रहाओ हिन माहे थाप उथाप दा आचर्ज तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियारे मह दीप खुद खसम खलक जहान अल्लाह।

नाम संभाले जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को घुम जाया वे आप छुटे परवार सिउ सब जगत छदाया गुर प्यारे हर सेविया गुर धन गुर तनु गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनु जो गुर सिख गुर सेवंदी से पुन परानी जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुर्बानी गुरमुख सखी सहेलिया से आप हर पाइया हर दरगाह पैलाइया हर आप गल लाइया जो गुरमुख नाम त्याईंदे तिन दर्शन दीजै हम तिन के चरण पखाल दे धूड़ कोल कोल पीजै पान सपारी खातिया मुख बीड़ियां लाइया हर हर कदे ना चेतेउ जम पकड़ चलाइया जिन हर नामा हर चेतिया हिरदै उर धारी तिन जम नेड़ ना आवी गुर सिख गुर प्यारी हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुर भेटिया रंग रलिया माने सतगुर दाता आखी तुस करे पसाऊ हो गुर विट हो सद वारिया जिन दितड़ा नाऊ सो धन गुरु सा बास है हर दे सनेहा हो वेख वेख गुरु विगसिया वे।

तुध पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे बहो रंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी कलंग महला नौवां काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तू चेत लै निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औद बेहात है फूटे घट ज्यो पानी रहाऊ हर गुण काहे ना गावे ही मूर्ख अज्ञान।

मात पिता सुत बंद जन हित जा स्यो कीना जियो छूट्यो जब दे ते दार अगन मैं दीना जीवत लो व्यवहार है जग कौ तुम जानो नानक हर गुण गाए लै सब सुफन समानो।

आऊ संपत रथ धन राज सिउ अतने हो लगायो काल पास जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

मेरा नाम है आधारा रहाऊ करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी हाजरा हजूर दर पेश तू मनी।

कुजारपति कुजा मेरवि दीवार का नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल द्वार का नगरी काहे के मगोल चंदी हजार आलम एकल खाना हम चिनी पातशाह सांवले बरना असपत गजपत नरह नरेंद्र नामे के स्वामी मीर मुकंद।

प्रसाद। राग सूही महला पहला, चौपदी घर पहला। पांडा तोए बैस धूप देव हो, तौ दूधै कौ जाव हो। दूध कर्म फुल सुरत समायन, हुए नरास जमाव हो। जप हो ता एको नामा, अवर नराफल कामा रहाओ। इह मन ईती हाथ करहु, हुन नेत्र हो नींद ना आवै। रसना नाम जप हो तब मथिया, इन बिद अमृत पाव हो। मन संपट जित सत सर नावन, भावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे, इन बिद साहिब रवत रहै। कहंदे कह कहे कह जावह, तुम सर अवर ना कोई। भगत हीन नानक जन जंपै,

हर जाई, अमृत छोड़ काहे बिख खाई, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो चाकर साचे केरे रहाऊ, ज्ञान ध्यान सब कोई रवे, बांधन बांधिया सब जग पवै, सेवा करे सो चाकर होए, जल थल मही अल

रहाउ ओठे मंडप माड़िया पासों चितविया तकियां कामना आवनी विचों सखणिया बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मांजव सन कोट कोट जिया खामने बग्गे ना कहियन सिमल रुख शरीर मैं जन देख पुलान ते फल काम ना आवनी ते गुण मैं तन हन अंधले भार उठाया डूंघर वाट बहुत अखी लोड़ी ना लहा हौ चढ़ लंगा केत चाकरियां चंगियाईया अवर सियाण पा केत नानक नाम संभाल तू बदा छुट है जेत सुई महला पहला जप तप का बंद बेड़ला।

सद रंग ढोला रहाऊ साजन चले प्यारिया क्यों मेला हुई जे गुण हो वह गंठड़ी है मेलेगा सोई मिलिया हुई ना विछुड़ा।

0: साचा खसम हमारा तू ही महला पहला जिनको भांडै भाऊ तिना सवारसी सुखी करै पसाऊ दुख वसारसी ऐसा मूले नाही सर पर तारसी तिना मिलिया गुरे आए जिनको लिखिया अमृत हर का नाऊ देवै दिखिया चल है सतगुर भाई पवै ना भीखिया जा को महल हजूर दूजे निवै किस दर दरवाणी नाही मूले पुछ तिस छुट्टै ता कै बोल साहिब नदर जिस कले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोई ताई उसारी साज जाने सब सोए नाओ नानक बख्शीस नदरी कर्म होए सोई महला पहला भांडा हच्छा सोए जो तिस भाव सी भांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी एत द्वारे तोए हच्छा होए सी मैले हचे का विचार आप वरताए सी मत को जाने जाए अगे पाए सी जे कर्म कमाए तेहा हुए सी अमृत हर का नाउ आप वरताए सी चलिया पत स्यों जन्म सवार वाजा वाए सी मानस क्या विचारा तेहो लोक सुनाए सी नानक आप निहाल सब कुल तार सी सूही महला पहला जोगी होवे जोगवे भोगी होवे खाए तपिया होवे तप करी तीर्थ मल मल नहाए तेरा सदड़ा सनीजै भाई जे को बह अलाए रहाऊ जैसा बीजै सो लुणे जो खट्टे सो खाए अगे पुछ ना होवई जे सण निशान जाए तैसो जैसा कांडी है जैसी कार कमाई जो दम चेतना आवई सो दम बिरथा जाए एहो तन वेची बै करी जे को लए विकाए नानक कम ना आवई जित तन नाही सच्चा नाम।
1: केवो दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
2: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
3: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी singhsabha2@gmail.com।
4: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

शास्त्र है उसे भाई शास्त्र न की बढ़ रहे हो इस शब्द शास्त्र ने थोड़े अवगुण बढ़ देने थोड़े विकार खत्म कर देने ये जरूरी है। रोटी दो दिन ना भी मिले ता भी सर जूगा पर अवगुण अवगुण तो इको बथेरे तुसी सियाने बैठे हो चंगा तो होंगे गुण सब जानते न पर तगड़ा होंगे अवगुण ये शास्त्र का कथन है। चंगा तो गुण है ना पर जोरावर तगड़ा होंगे अवगुण लखा गुणा तगड़ा गुण नालों चंगा गुण देखो किन्नी विपरीत भाषा शास्त्र की क्यों है भाई जेड़ा अवगुण है ये जिनी ताकत गुण विच नहीं है अवगुण विच ताकत ज्यादा ऐसी समझ लो कमेंट्री च रहने तुसी सौ गुण कर ले सौ चंगा काम बहुत चंगा अवगुण एक कर ले सौ परे सौगा फिर जूगा सतनाम सौ ने मरिया मैं हजार गुण नो एक अवगुण मरिया मैं कर फिर तगड़ा अवगुण होया कि गुण होया हजार चंगा काम एक माड़ा वह हजार गया गुरसिख प्यारे खत्म जगह पढ़ देना उन्हें ये जी शब्द की तेज है गुरुद्वार चलनी बाणी सुननी कथा कीर्तन सुनना ये सीधे हर नाम खग सतगुरु अर्जन देव जी की पवित्र रचना वो पटके जेड़े तेरे दरबार में आके तेरा शब्द सुनते ने बाणी सुनते ने वो शब्द ऐसी तेज है खग ऐसा खंडा है उन्हें सुन वाले काम क्रोध लोभ विषय विकार सारे शब्द का शास्त्र वढ दंदे हूं समा ज्यादा हो जाए एक टूक मात्र है तुम्हें सतगुरु नानक देव ने केड़ा शास्त्र चके शब्द का शास्त्र शब्द जीती सिद्ध मंडली शब्द ना तिने लोगों जित लिया आज दसवें पातशाह के इतिहास में चौदह जंग गुरु गोबिंद सिंह ने जिते ते औरंगजेब का बाई धारियां का सत्यानाश होने वाला हो गया सी चौदह जंगा में हार होनी ते गुरु गोबिंद सिंह जिते लखा सिपाही मर गए इन्ना चिर जंग लड़ना सरकारां नूं कितें सिखाला अठ महीने हो गया घेरा पे इन्ना कुछ होने के बावजूद औरंगजेब ने हार नहीं मनी यही कहते रहे उहदे जरनैल सी जित गए औरंगजेब भी धौसे बजाउंदा रहा सी जित गए पर हार कदों मनी चौदह जंग हार के औरंगजेब ने हार नहीं मनी हार मनी जो दीने कांगड़ तो चिट्ठी लिखी गुरु गोबिंद सिंह जफरनामा जी का नाम है वो सी शब्द जफरनामा शब्द है शब्द की तलवार है वो भाई दया सिंह ते धर्म सिंह जी किथे गए मनवाड़ तो 200 किलोमीटर की दूरी से औरंगाबाद शहर है हजूर साहब से मनवाड़ के बचाले जिथे फौज की कैंट है औरंगाबाद कैंट है बहुत औरंगजेब का बसाया हुआ शहर वे नाते उथे सी उदो औरंगजेब ते दया सिंह जी ते धर्म सिंह जी दीने कांगड़ तो चिट्ठी लेके गए गल मुका दीए चौदह जंग हार के नहीं सी हारिया औरंगजेब पर जब शब्दों की तलवार वजी ना पढ़िया जफरनामा मुड़के मंजे तो नहीं उठिया इथे आखो सतनाम अद्धी कबर उसी होगी औरंगजेब की अद्धा उसी मर गया इस शब्द की अज भी लोड़ है जे सिक्खी का सुधार करने डांग नाल नहीं होना नहीं नहीं ये आकड़ नाल नहीं होना कुछ निम्रता लियाओ अपने बेच ये शब्द की तलवार नाले मनमत नूं कटिया जा सकता है वो निरंकारिया ने तलवारा चटिया व्यासा है वो बंदूकों ने तोपा ने सच्चा सौदा उन्होंने को तोपा ने कितने उन्होंने किमें जितनी दुनिया शब्द देना शब्द ना जीती इतने का कठिन साडा गुरसिख प्यार कित जाके वेखो निरंकारियों के व्यासाया के एतवार तिल सीटन जगह नहीं कीड़िया वांग तुरिया फिर दुनिया दस दस को तो तुर के वो कहदे ना जितया की बलूख है उन्होंने की तलवारा चलाईया उन्होंने तलवार तो गुरु गोबिंद सिंह ने उदो दती है जदों हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त ऑपरेशन डॉक्टर उदो करदा हुंदा है जदों दवाइया असर ना करन जेड़ी चीज बटियां ना ठीक हो जाए लत बढ़नी थोड़ो जेड़ी चीज ठीक है ना ठीक होते पेड़ थोड़ो पाड़ने
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬੱਤੀਆਂ ਨੀ ਲੈਣੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ।

एक धन देश है जिसे तिलकिया के लोग हम सिंह के लिए लोग मत से रविन्द्र वास के लिए करना चाहते हैं। उनकी जगह सुबह हरे गुरु के प्यारे गुरु के साथ दीदार होते करने वास्ते।

वारण है, ब्रज के चरण है, जग के करण है। मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणाकर है, विश्वं पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है। ब्रह मंडस है, खल खंडस है, परते पर है, करुणा कर है, जप जप है, सप सप है, अकृत अकृत अमृत अमृत है। अकृत अमृत अमृत है, करुणाकृत है, अकृताकृत है, तरणीकृत है, अमृतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृताकृत है, अमृत अमृत है, जब अकृत अमृत अमृत है, निर्णायक है, कलकायिक है, विश्वम्बर है, करुणालय है, निरपनायक है, सर्वपायिक है, बहुपंजन है, अर्गजन है, रिपतापन है, जप जापन है,

तन्वदतन स्वरूपेण योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योति शुद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलय कर्ता नमो ज्ञान।

0: 93.3 सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम स्लिप तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हैं कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
1: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874।

सदगुरु पेटे सोस पाए हर का नाम वसाए नानक नजर करे सो पाए आस संदेश तेने केवल हम शब्द जलाए पड़ी पग तेरे मन।

गौ ब्राह्मण कौ कर लाभ गोबर तरण ना जाए। धोती टिका तै जप माली धान मलेछा खाए। अंतर पूजा पड़े है कते बा संजम तुरका पाए।

जिसकी तप अपना साका दुरी क्यों का लिया है। मंदा मुना की ते दिल में नजर निहाली है, जो साहेब नाल हारी है ते वेहा पासा ढाली है। पिछला

for sad sand, Mukhyao God Godan, A Lil Gunwun Kasuna Bude, Bakshilo Tonan Sija, Jam Prasad Taru Sukhasa, Sotaparat Need Banta Tanhasa, Jam Prasad Tiru Sital Jala, Sukh Dai Pana Pavat Amula, Jam Prasad Pogu Samrata, Sal Singhi Sam Sad Bata, Dine Hat Pau Karan Nitra Ratna, Kisu Pyar Avasan Ratna, Ate Dogmuran Deata, नानकालियों का बात है आज हम पूरा संहार इस योगी प्रकरण द्वार जहाँ की सेवा नो नित पाया ताकि मुरा मन इलावा दूर ठाकर ससरा हजूरे तांगो अंदा जान तो दूरे जहाँ की ताल पाए तो कीमा किसी विसारे मुगदयान पास राय पूर्ण संहार नानकरा संहार होता रतन प्यार कोडी संग्रहे साथ छोड़ दूर संगते जो चलना स्वस्थ कर्माने जो हवन सो दूर कराने छोड़ जाए किसका आश्रम करे संग सहाय किस पर है चंदन लोग उदार हो गर बाती पसंद संग हो आंध कूप में पत्र बिखराल नान काले प्रभाव कसूर पशु की मांस जात लोग बिचारा करे जंगात बाहर तेज अंतर्मल मया शब्द नाय कर करे छुपाया बाहर ज्ञान ज्ञान स्नान अंतर जाते लोग स्वान अंतर अगम्बार संस्था गाल पात्र कहते परे अथा जहाँ के अंतर बसे प्रवास नान तेजन सह समाज सो उनका कैसे मार्ग पाए कर गैलो ओ निभाए कहाँ बुझाग बुझे डोरा निष्क्रिय तो समझे थोड़ा कहाँ बिसन पर गाया ढोंग जतन करे तो भी सर सांग कहो सिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तो आप जवान करदार करना मैं दीन दिन सीख रहे नान सुमरी कृपा करे सांग सहाय सो आए न चीत जो बराई ता सुप्रीत बलुआ के ग्रह पीतर बस

कई जन्म नानक राह लेवा कर करम तू ठाकर तू तेरदा जियो तुम सब तेरी राह तुम मा पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा मैं सुख नेरे तू न जाने तुम रंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत।

एक भी न दे दस भी हिले तो मोरा को का करे जिठा कृष्ण नहीं तारा ताको की जय सब नमस्कारा जाके मन लागा अपना मीठा सर्व सूख ताओ मन बूठा जिस जन अपना हुक्म नाया सर्व थोग नाम चिन पाया अगलत सा अपनी दे रास खात पीत बरते अनंत उलास अपनी अमान किस बोर साले अज्ञान निर्मल होश करे अपनी प्रतीत आप ही खोए बहु उसका विश्वास न होवे जिसकी बत्तीस आगे रखे ताकि आगे माने मत उसके चौगन करे निहाल नानक साए सदा ध्यान अनक पात माया के हेत सर पर होत जान अनेत दुर्ग की छाया चुन लावे ओ बिन सह ओ मन पछतावे जो जीते सो चाल नहार लपड़ रो तै अंध अंधार बताओ छो जो लावे ने ताको हाथ ना आवे के मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन तन पदम सुभाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज जोगन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रत हस्ती असो बत्रा मिथ्या रंग संग माया पे खत्ता मिथ्या दो मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर कस गुमान अस्त्र भगत साध की शरण नानक जब जब जिये हर के चरण मिथ्या शरण पार निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्व को गिरा मिथ्या नेत्र पेखत पर क्रिया रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को छावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या दास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब है सफल तो नानक हर हर नाम ले बिरती सागर की आर्जा साथ बिना कह होवत सूचा दुष्टा नाम बिना तन अंध मुख आवता के दुर्गंध।

वस्त्र सिंह खान जय प्रसाद तुरता धर्म मन सदा त्याई क्यों पार ब्रह्म प्रभ जी जपे तुदर्गे मन पावे नानक पासे की कर जावे जय प्रसाद अरुण।

आप हुकुम पैरी जाए मन तिस सिमरत क्यों आलस की जाए जय प्रसाद असल हस असवारी मन तिस प्रभु कबूना बिसारी जय प्रसाद बाग निरत तना रात परे प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सत से प्याई।

मन हो प्रगाव जैसे हर उ पड़ाता ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा मन अपने है सब से नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभु आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की बिना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी पीना ब्रह्म ज्ञानी की अब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी से किस पुराना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल दुखता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनास ब्रह्म ज्ञानी कह दी भी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार कुमाहा ब्रह्म ज्ञानी के ना ही संधा ब्रह्म ज्ञानी ले सावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हो सुख फला।

ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रसंग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर्षा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नाई विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता ब्रह्म ज्ञानी का हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभात ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रसाद ब्रह्म ज्ञानी का दस और भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे निवेश।

ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुकुट जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष दाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का काबू प्रहाक, ब्रह्म

सब ऊपर मोर कृपाल आदरण अमरा नाम जपारा नानक उदासो परम गपाय भगवती भगवंत पवकारांग सब त्यागे दुष्कार संग मन ते दिन से सगला परम का पूजे सगल पार ब्रह्म सात संग पापा मर को इस भगवती की मत तुम हो भगवंत की ताल करे नीत मन अर्पण विष्णु प्रीत आगे चरण।

अनास श्वेत मुगल पात्र को तारा है सर्व लोक का औखद नाम कल्याण रू मंगल गुण गाम काहू जुगत की देना पाए धर्म नानक तुष मिला जिस लिखा कुल कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास जिसका नाम सत राम दास आत्म राम उस नगरी आया दास संपन्न पाए सुन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर्गे प्रवान अपने दास को आप कृपा करे जिस दास को सब सो जीत रहे सर्व संसात हो दास ऐसी दुख नानक राम दास प्राप्त किया गया आत्मे पाया जीवन मुक्त सो कहा है तैसा हरक तैसा उत्सोर सदा आनंद तैना वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उत्माटी तैसा अमृत तैसी दिखाती तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक।

कई बोर्ड वेद केस होते, कई बोर्ड तीसरे होते, कई बोर्ड आत्मज्ञान पा रहे, कई बोर्ड कब का विचारे, कई बोर्ड नाम नाम प्यारे, नानक कसे कांत न पाए, कई बोर्ड भय अभिमानी, कई बोर्ड अंध अज्ञानी, कई बोर्ड कृपण कठोर, कई बोर्ड अभग आत्मोर, कई बोर्ड पर दर्व को है, कई बोर्ड पर दुख न करे, कई बोर्ड माया कमाए, कई बोर्ड पर दुष्ट कमाए, जिस जिस लावो तुझ सिर लगना, नानक कसे की जाने कथा रचना, कई कोट सिद्ध गति जोगी, कई कोट राजे रसोगी, कई कोट पंखी सब उपाय, कई कोट पात्र बिरख जाए, कई कोट पवन पानी बसंत, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सुशील सूर निखत, कई कोट देवदान इंद्र से छत्र, सदस्य मिली अपने सुतारे, नानक जिस जिस पारे है, तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस्थान शासक, कई कोट देव प्राण सिमरत अशास्त्र, कई कोट किए रतन समुद्र, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चल जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख किनर पिसाज, कई कोट भूत पे सुगर निर्गात, सब ते मेरे सब से दूर, नानक आप अलप्रया प्रकूर, कई कोट पता के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी।

सुखना की निर्मल से जब लग जाने मुझे कुछ हुए तब इस को सुखना ही को जावे जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जो मैं करता जब सारे कुल बैरी मीत तब निकलना ही जीत जब लग मुल मगन संगमा तब लग करवाए देश जा जब कृपा दे बंधन टूटा गुरु प्रसाद नानक हो छूटे शैंस कटेला कोट पाए कृष्णा आए माया का छिपाए अनुभव दिखा के कराए मैं तृप्ता खप खमरा।

कदे पट पट कदे पसंद ये ते आंदे रहेंगे रुका मुड़निया पर जब बंदा चलिया जा मुड़ के नहीं आऊंगा।

अवगुण कीते गुण करे, भला अवगुण चित्त बसाए, गुण कीते औगुण करे, बुरा न मन अंदर गुण पाए, जो बीजे सोई फल पाए। पर साडा की सवाए, जिहदे लई असीं बहुत परोपकार कीते होण, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਰੋਸ ਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੈਸੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾ, ਭਲਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਨਾ ਸੋਚ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ 15 साल की उम्र सी जदों गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे कोल आया, बच्चियां वांग इहनू पालिया, हर तरह की शस्त्र विद्या भी इहनू सिखाई। इन्ना जवान हो गया दुश्मन नू घोड़े समेत चुक लैंदा सी, ते गुरु हरगोबिंद पातशाह जी भी इहदी जवानी ते बहुत माण करदे ने। पुत्रां वांग ते पाले, अपने बच्चियां ते कौन माण नहीं करता। एक दिन इसकी मत फिर गई, दुश्मनां नाल जा रलिया, मैदानी जंग विच लड़न वास्ते आ गया, ते गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं ललकार रहा है। कहिंदा है तुहाडे सारे दा पेच मैं जाणदा, करो मेरे ते वार। गुरु महाराज जी कहते ने, पेंदे खां तू इस घर विच पलिया है, तेनू पता है इस घर वालों वार कीते नहीं जाते, रोके जाते ने। तू मन बना के आया है ते कर ला वार। इन्हें गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ते वार कीता है, सतगुरा रोक लिया, फिर वार कीता है, सतगुरु फिर रोक लेंदे ने, तीजी वार फिर इन्हें वार किया महाराज जी से। हुण ते मेरे दाता जी ने म्यान विचों किरपान कढ़ी, पहले वार नाल ही इसनू धरती ते लटा दिता, जमीन ते पिया हाय हाय कर दे। ते गुरु महाराज कैसे दयावान ने, घोड़े तो उतर के इहदे वल दौड़े आते ने। इन्हें सोचिया हुण मैनू होर मारनगे, पर नहीं, सतगुरु की देखते ने, जमीन ते तड़फ रहा है, सूरज की रोशनी इहदे मूंह ते पै रही है, अखां च पै रही है, ते महाराज अपनी ढाल दे नाल इहदे मूंह ते छां कर दिंदे ने। कहिंदे ने पैंदे खां हाय हाय नहीं, अल्लाह अल्लाह कह, मैं तैनूं छां करदा है, तू कलमा पढ़ ले। तन है पातशाह, तुसी साडे लई कैसे पूरने पा गए हो, कोई दुश्मन बन के भी आया है, तुसी उसका भी भला करी जाते हो।

आणि पत्थर लेख दियो पला बुरा प्रकृत सुवाए वैर न टिकदा पले चित हेत न टिके बुरे मनाए। जिस तरह पानी ते लकीर नहीं पैंदी इसके तरह पले मनुख दे मन विच बुरियाई नहीं टिकदी। जिस तरह पत्थर दी लकीर नहीं मिटदी इसे तरह बुरे बंदे दे मन विचों बुरियाई नहीं जाती। भला बंदा परोपकारी हुंदा है ते बुरा बंदा बेकार करता है। बुरे बंदे दी ते बंदगी भी परवाह नहीं है। तुसी आखोगे बुरा बंदगी ते करता है ना, सवेर शाम गुरुद्वारे ते जांदा है ना। हां सत्संगीयो, ये गुरुद्वारे मंदिर भी जांदा है अपने स्वार्थ लई, अपनी मनोकामना दी पूर्ति वास्ते। तो रब जी जानदे ने कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की तीर पछाणत। ओ पलिया बुरिया नूं पहचान लैंदे ने। जिदड़े दी मंग ना पूरी होई इन गुटका भी रख देना है ते गुरुद्वारे मंदिर भी छड देना है। फिर आपां सुणदे वी सां, मैं नहीं हुण गुरुद्वारे मंदिर जांदा, मैं नहीं पाठ पूजा करदा, की फायदा जानदा जे मनोकामना ही ना पूरी होवे। एक मनुख उन्हें बहुत बंदगी कीती, रब जी दयाल हो गए, कह लगे मांग की मंगदा है। वो अगो कहंदा है रब जी जो मंगांगा देवोगे। बहुत बंदगी कीती, रब जी ने आखिया कोई कमी नहीं, जो मंगेगा मिल जाएगा, पर एक शर्त है, जिन्ना तू मंगेगा ना उदू दुगना तेरे भरा नूं मिलेगा। ते अगो आखन लगा, जी मेरे भरा नूं क्यों दुगना मिलेगा, बंदगी ते मैं कीती, मैं 100 मंगांगा उन्हूं 200 मिल जाएगा। उस मेरे निरंकार ने आख्या जे तैनू 200 दी लोड़ है तू 200 मंग ले। मैं एक घर मंगांगा उन्हूं 2 मिल जाएंगे। बई तैनू 2 दी लोड़ है तू 2 मंग ले। सोचन लगा उन्हूं 4 क्यों मिल जा। फिर सोच विचार के कहंदा है रब जी इंज करो, मेरी एक अख अन्नी कर दियो, एक अख मेरी बंद कर दियो। सोचदा है आपे भरा दियां दोनों जांदियां लगणगियां। मेरे घर अगे एक खूह पुट दियो। सोचदा है दोनों अखां भरा दियां जाणगियां, घर मोहरे 2 खूहे होणगे, आपे खूह विच डिग के मर जाएगा। रब जी ने आख्या ओए बुरिया, तेरी बंदगी परवान कोई नहीं होती। मैं ते एवें भांडे नूं टणकांदा पिया सी, भांडा जे कच्चा है तेरे अंदरों बुरियाई नहीं गई, तैनू मिलना कुछ नहीं। मैं ते एवें भांडे नूं टणकांदा पिया सी, कुछ नहीं मिलना तैनू। जिहड़ा अपने भरा दा भला नहीं कर सकता किसे दा की सवारेगा। स्याणियां दा मत है ना, बुरे बंदे कोल धन होवेगा, विद्या होवेगी, कोई उच्चा अहुदा होवेगा, इन्हां शक्तियां नाल उह लोकां दा बुरा करेगा। भले बंदे कोल विद्या होवेगी, धन होवेगा, वो इन्हां शक्तियां नाल लोकां दा भला करेगा। इसीलिए आख्या है ना, ऐ रब जी
ਬੁਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਦੇਈ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨੇ ਨੇ।

सुखिए को देखे सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी। जिस तरह की अपनी सोच है दूसरों भी वह जहा सोचता है। रस्ते विच एक दरख्त है, बहुत घनी ठंडी इसकी छां है। आंदे जांदे राही गर्मी की रुत विच इहदे थले आराम कर लैंदे। अज बहुत सारे मनुख सुते पए ने। एक लकड़ा का व्यापारी उठ के बैठा ते नजर भर के दरख्त वल देखदा है। की सोचदा है? जिस दरख्त नूं खरीद लवां, कटाई दे के चराई दे के ते बेच के 100 रुपया फिर बच जाएगा। इन दरख्त विचों व्यापार नजर आता है। ते एक संगीतकार सुता पिया है, वो दरख्त वल देखता है। हवा चल रही है, टाणियां विच टाणियां बज रही ने, पत्ते खड़क रहे ने। संगीतकार कहता है, ऐ रब्बा कैसी संगीत में तोने। एक कुदरती संगीत है, संगीत है ही तेरी कुदरत। उन्हों दरख्त विचों संगीत सुनता है। एक मनुख वो घरों लड़के आया है, वो भी दरख्त थले बैठा है। अज घरवाली नाल लड़िया, बच्चियां नाल लड़ पिया है, माता पिता नाल झगड़ा किया है, ते गुआंढियां नाल भी झगड़ पिया है। सोचन लगा सारे झगड़ते ने, किसी ऐसी जगह ते चले जावां जिथे झगड़ा होवे कोई ना। ते ए भी बैठा

मेरे अबाद डुबदे पत्थर तारे ए मालक साड़ी विच किन्नी कौगण ने जेता समुंद सागर नीर भरिया अजना समुंदर सागर विच पानी इन्नी साड़ी विच गुनाह ने साड़े गुनाह की गिनती नहीं हो सकती पर ए मालक तेरे लिए केड़ी बड़ी गल है तू चाहे ते पत्थरां नू पानी ते तार दे तेरे लिए केड़ी बड़ी गल है ए मालक बख्शिश करो सानू गुनाह दे परियां नू तार दे शाम दा वक्त है थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है कबीर जी ते कबीर जी दे करूं लोए जी दोनों जाने नदी दे किनारे ते खलोते ने नदी पार करके अपने घर जाना है की तक रहे ने नदी दे किनारे इको ही बेड़ी खलोती है कबीर जी ने मलाह नूं आख्या वे सानू भी परले किनारे लै जा मलाह ने अगों आख्या वे तेनू दिसदा नहीं मेरी बेड़ी दे विच सेठ जी बैठे तेनू मैं उन्हां दे नाल किवें बिठा सकदा कबीर जी ने जेब विच हाथ पाया पैसे कढ़े आखन लगे भी जिन्ने तेरे पैसे बनगे मैं देवांगा पैसे लै लमी तू किराया लै लमी पैसियां बल देख के मलाह दा मन मन गया चंगा बई बैठ जा बेड़ी विच अज दोनों ही जाने लोई जी ते कबीर जी बेड़ी विच बैठे ज्यों ही बेड़ी दे विच चढ़े ने अगों सेठ उठ के खलो गया कोई मला है की करी जांदा है गरीबड़ियां जिया नू मेरे नाल बिठाई जांदा है तैनू नहीं पता असी छोटे लोकां नाल नहीं बैठते जिन्ने पैसे इस तो लेने ने पांच गुणा ज्यादा मैं तेनू दे देवांगा इनू थले उतार दे छोटे लोकां दे नाल बैठण दे नाल शोभा कट जांदी ते कबीर जी ने हाथ जोड़े सेठ जी रात पै रही है होर कोई बेड़ी नहीं तुसी सानू उतार देवोगे ते असी किवें कर जावांगे बच्चे साडे उड़ीकदे होणगे बच्चे उड़ीकदे होणगे एडी वड्डी बेड़ी है एक किनारे लग के असी दोनों ने बैठ जाना कोई ज्यादा जगह नहीं जे लैणी एक किनारे लग के दोनों ही बैठ जावांगे ते बाकी विच तुसी बैठे रहो अजे कबीर जी सेठ नू एडा तरला कर ही रहे इन्हें नू सेठ दी घरवाली उठी ते उठ के लोई नू बेड़ी विचों बाहर तका दे देता बाहर तका दे देता गुस्से दी परी किड्डे किड्डे माड़े बोल बोल दिते ऐ छोटे लोग एदा नहीं मनदे होंगे कबीर जी की तक रहे लोई बार खलोती है अखां विचों हंजू रो रही है हंजू केर के रो रही है इने नू सेठ गुस्से दा भरिया कबीर जी नू बांह तो पकड़िया ते फड़ के बाहर कढ दिता मलाह नू आखिया मार बे चप्पू ते चलिए दोनों नू थले उतार के सेठ अज बेड़ी लैके तुर गया है
लोई ने अखां विचों हंजू केरे। स्वामी अज तकिया जे गरीबी किड्डा डाढ़ा दुख है, अज देख लिया जे गरीबां दा की हाल है। ते सत्संगियो कबीर दा भी मन पार आया, किनारे ते बैठे एक मन एक चित हो के लिव प्रभु दे चरणा नाल जोड़ के बैराग दे विच भिज के अखां विचों केर के हंजू अज कबीर ने रो के अरदास कीती, ऐ मेरिया रब्बा आ देख धरती ते की हो गया। धन वाले गरीब नू लागे भी बिठा के राजी ने, जिन्हां नू तू सुख दिते ने, जिन्हां ते तू रहमतां कीतियां ने, देख उन्हां दा मन किड्डा बिगड़ गया। गरीब नू लागे भी बिठा के राजी ने, ऐ मेरिया रब्बा गरीब होना कोई जुल्म है। रो रो के उस प्रभु नाल गल्लां कर रहे, ऐ मेरे प्रभु जे गरीब होना जुल्म है ते सारिआं नू क्यों नहीं अमीर कर देंदा, क्यों नहीं सारिआं नू धनवान कर देंदा। सत्संगियो उस प्रभु दी लीला बड़ी न्यारी है, अजे कबीर दी अरदासां ही कर रहे ने, अरजोइयां ही कर रहे ने, ते की कौतक बरतिया किनारे दे उपर जिस पत्थर ते बैठे ने वो पत्थर अपने आप हिलण लग पिया है। लोई देख के हैरान हो, ऐ की होया, पत्थर हिलण लग पिया है। कबीर जी ने लिब जोड़ी हुई है, लोई चक रही है, पत्थर हिल पिया, एहो जिहा हिलिया बेड़ी दे वांग पानी ते तैरन लग पिया। की रहमतां होईयां, तैरदा होया उस सेठ दी बेड़ी नालों भी अगे निकल गया। ते सेठ देख के बड़ा हैरान होया, बई ऐ की गल, कोई धक्का नहीं ला रहा, कोई चप्पू नहीं मार रहा, ते बड़ी हैरानगी दी गल, पत्थर अपने आप पानी च तुरिया जा रहा। सेठ देख के बड़ा हैरान हो रहा, पत्थर अपने आप पानी च तुरिया जा रहा। मलाह नू पुछिया भी ये कौन है, मलाह ने आखिया कबीर है। ये कबीर है, इहदी ते अगे भी बड़ी सोभा सुनी, ये बड़ा सिमरन वाला है, सुनिया है, अज ते अखी तक लिया। इस पत्थर ने बेड़ी नालों भी पहला आके कबीर नू किनारे से ला दिता। कबीर दी उतर के तुरे ने लोई नू आखिया, बलिए ऐवें छोटी दिनी गल ते रब नू उलांभे देण लग जांदी। लोई नू आख रहे, ऐवें घबरा जांदी, जे गरीबां दा कोई नहीं ते गरीबां नू रब रब रख लैंदा है। कबीर जी समझा रहे ने, पलिए पले धन नाम धन होना चाहिदा है, पले प्रभु दा नाम होना चाहिदा है। गरीबां दी कोई ना बांह पकड़े, वो रब पकड़ लैंदा है। ऐवें ना छोटी जिनी गल ते रब नू उलांभे ना देण लग जाया कर। आज अपनी अखां नाल तक लिया, इन्हें नू सेठ मला बेड़ी च उतरे ते कबीर दे मगर नसे आ रहे। कबीर जी अगे अगे ते सेठ मला पिछे पिछे दौड़े आ रहे ने, ते आ के कबीर दे चरण पकड़ लए। कबीर साडे कोलो गुनाह होया, माया दे हंकार विच तेनू किन्ना मंदा बोल बैठा, तेनू धक्के मार बैठा, सानू माफ करी। ते गुरु सवारियो
ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੱਖਦੇ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੇਠ ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਰੀਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਰਵਾਲੇ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਸੇਠ ਇਹ ਸੁੱਖ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੱਕਿਆ ਲੱਖਾਂ ਪਤੀ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਫਲ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਥਰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਰੀਦਾ, ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਰੀਦਾ, ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੀਦਾ। ਸੇਠ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਕਾ ਦਾਸ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਭਲਿਆ ਨਾਮ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਮ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੱਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਾਮ ਕਾ ਦਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਕੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਰਾਮ ਕਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਸੇਠ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਥ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਸੇਠ ਦੇ ਮਨ ਆਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਲੋਹੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਥ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਮਗਰ ਪੈਦਲ ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਐ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਾਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਔਗਣ ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ।

अर्ण करके आनंद बख्शिश कर दे। महाराज सच्चे पातशाह कृपा कर रहे हैं भाई, जे सुखी होना है धन दौलत विच सुख नहीं, सोने चांदी दे ढेर ला लै सुख नहीं, महल मारिया विच सुख नहीं, सारी सृष्टि दा राज प्राप्त करके भी राजा दुखी है। महाराज कहदन जे सुख है ता ओ हरि दे सिमरन विच है। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। जे सुख भाई मानना चाहते हो तो धन गुरु नानक पातशाह बख्शिश कर दिया।

रे रे वाहे गुरु कहिंदे है गुरु सिखा हर वेले तेरी रचना ते वाहे गुरु वसदा रहे। वाहे गुरु दे सिमरन विच बड़िया ही पावरां ने। अज गुरु नानक पातशाह बाले नूं आख रहे ने, बालिया एक मेरा मित्र बड़ा ही प्यारा मित्र है, किन्ना चिर होया मैं उसनूं मिलिया नहीं, ते मेरा जी करदा है अज उसनूं मिल के आईए। बाले ने आखिया चलो बाबा चल रहे हैं। बाबा नानक ते भाई बाला दोनों जाने अपने मित्र नूं मिलन वास्ते जा रहे हैं। इस दे पिंड विच पुजे ने जिसका नाम इतिहास विच मूला है। मूले दे पिंड पुजे ने, सामने मूले दा घर है ते दरवाजा मूले दा खुला है। घर वाली अग्यों तक रही है, फकीरी लवास गुरु नानक ते नाल बाला दोनों जाने आ रहे ने। नस के गए स्वामी गुरु नानक आ रहा है। फकीरी लवास विच अगे कदी घोड़िया ते आंदा सी, कदे पालकी विच बैठ के आंदा सी, अज फकीरी लवास मैनू लगदा है जरूर कुछ मंगण आया हो। फिर तुहानू नाल लै जांदे ने, किन्ने किन्ने दिन तुसी घर नहीं गए आंदे। इंज करो तुसी अंदर लुक जाओ ते मैं उन्हां नू आख देवांगी कि मेरा पति घर नहीं है। अज अपनी घरवाली दे आखी लग के मूला पिछले कमरे दे विच लुक गया है।

करवा लिए क्यों बोली। नहीं मेरा पति कार नहीं है। बाबी ने फिर आवाज मारी, मूलिया दरवाजा खोल। आखन लगी वो कार नहीं है। बाबी ने आखिया वो चंद्रया असी कुछ तेरे कोलों मंगण नहीं दे आए। असी ते तेनू प्यार करके तेरी मित्रता करके तेनू मिलन वास्ते आए हैं। बाबा जानी जान है, बाबा ते लोक परलोक दी सोझी रखदा है, बाबे दे ओले की हो सकता है। गुरु नानक दरवाजे ते खलोते आवाजा मार रहे ने, ओए मित्रा चंगा तू मित्र है, इन्नी प्यार नाल तेनू मिलन आए हां ते तू अंदर लुकिया बैठा है। संसार है घर परिवार दे आखे लग के ए जीव कई बार बुजुर्गां दे नाल इहो जिहियां गल्लां करदा है। पर सतसंगियो बाबा नम सिंह दी बख्शिश करदे सन, जिहड़ा इंसान अपने बुजुर्गां दा सत्कार नहीं करदा, बुजुर्गां दी संभाल नहीं करदा, वो कदी भी गुरु नानक दी नज़र विच बख्शिया नहीं दे जांदा। एक संसारी गाथा, एक बुढ़ा बापू तुरिया जिस कोलों जांदा नहीं, अपने पुत्र नू आख रहा है, पुत्रा ना तू मैनू चंगी तरह प्रशादा छकाउंदा है, ना चंगी तरह मंजा बिस्तरा देंदा है, हर वेले मंदा बोलदा रहिंदा है, इदे नालों ते चंगा है मैनू किसे खूह दे विच टका दे दे। जदों बुजुर्ग बाबे ने इन्नी गल आखी ना, घर वाली आखन लगी, स्वामी दिन रात ये खंघदे रहिंदे ने, सौण वी नहीं देंदे, किन्ना चंगा होवे जे इन्हां नूं घरों ही कढ दे। देखो किहो जिहा पुत्र है, घरवाली दे आखे लग के अपने बापू नूं मोढ़िआं ते चुक के तुरिया जा रहा। लोकी देख के गल्लां कर रहे हैं, कोई आख रहा है भी पुत्र किड्डा चंगा है, किते प्यो नूं यात्रा ते लचलिया होगा। कोई गल्लां करदा है भी प्यो किहो जिहा है, पुत्र दे मोढ़िआं ते बैठा है। पर सतसंगियो कोई की इसके मन भी जाने, इस अपने बापू नू नदी विच सुटन वास्ते चलिया है, डूंगे पानी विच सुटन वास्ते चलिया है, घरवाली दे आखे लग पे मोढ़िआं ते चुकिया अपने बापू नू नदी दे किनारे ते पुजा ते नदी दे विच बढ़ के देख रहा है किथे क सुटा। प्यो ने आखिया, पुत्रा अगे करके मैनू जरा डूंगे पानी विच सुट दे, डूंगे पानी विच सुट अगे करके। पुत्र ने आखिया, बापू तेनू घर भी कोई चीज पसंद नहीं आती, ना तेनू कदी प्रसादा पसंद आया, ना बिस्तरा मंजा पसंद आया, ते तेनू हुण मरना भी पसंद नहीं जे आता। इन्हीं गल्लां करके ते मैं तेनू डोबण वास्ते आया। ते बापू ने आखिया, नहीं पुत्रा ये गल नहीं, आ जिस जगह तू मैनू डोबण लगा है इत्थे मैं अपने बापू नू डोबिया सी, तू मैनू अगे करके डोब, क्योंकि तेरा पुत्र तेनू उस तों भी अगे करके डोबेगा। आ जदों पुत्र ने ये गल सुनी ना, हिरदा कंब गया। ऐ मना ये चक्र संसार

गरिया पहनाव भी जिकारे की बख्शिश कर कोई पहन उसके जिकारे चली और प्रिय गुरु शब्द।

मैं सारे ठोक बजा के देख लेने, चंगी तरह परख लेने, जिड़ा प्यार अपना प्यो से अपनी मां।

मैं जिगरा भी कैसा है। अरे अब्बा जिन्हों तू पिता से मां बना देता है ना, उन्होंने बच्चों प्रति जिगरा भी अपने वाला ही दे देता है। बच्चों के प्रति बच्चों दिन जिन्हिया गलतियां जिन्हिया भुल अपनी चलती मां लिख दी है। तू ये भी ना सोची तू मैनू प्यार नहीं दिता, जे प्यार नहीं ना किया इहदे विच तेरी गलती कोई नहीं है, इहदे विच तेरी कोई भुल नहीं, सारिया मेरिया गलतियां ने। केड़िया? ओ कहिंदी मैं सोचदी हाँ रब ने मैनू दो अखां दित्तियां, एक चंगी ते एक मंदी, मैं मंदी अख तैनू दे बैठी, तैनू अख माड़ी दे दित्ती है। तू उस अख नाल देखदा ते मैनू नफरत करदा, चंगी अख रह गई मेरे कोल, तू ते मैनू बड़ा प्यारा लगदा। जिउंदी सी ओ मां सी मेरी, मर के मेरा रब हो गई, पता नहीं दिल दे कबर दे अंदर किन्नी डूंगी दब हो गई। ये उदाहरण ने ना, हुण तुसी अगली पौड़ी सुनो भाई गुरदास जी की कहते हैं। वो कहते ने लोग आसीसा देंदे ने रब तैनू सरबण पुत्र देंदे, इंजी कहते ने ना सियाने तेरे बच्चे सरबण पुत्र हो, पर अपने आस पास झात मारो सरबण पुत्र किन्ने ने। इत्थे एक बापू एक मां पांच सत बच्चियां नूं सांभ लैंदी है, पांच सत जवान बच्चे रल के एक मां नूं नहीं सांभदे। हुण तुसीं बिरध आश्रम विच जाओ, बुढ़े बजुर्गां नाल भरे पए ने, ते जदों सुणदे आं वी कि सिख दी मां है, सिख दा बापू है जिहड़ा बिरध आश्रम विच बैठा झूर रहे, फिर मन विच आंदा है जे सिख दी मां है जिहड़ी आश्रम विच बैठी रुलदी है ते इह सिख सारी जिंदगी गुरु ग्रंथ साहिब नूं ऐवें मत्था टेकदा रहा, इहनूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दी मर्यादा दा पता ही नहीं जां सुणिया ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी ते जिथे भी रब दे प्यार दी गल करनी उत्थे मां प्यो दी उदाहरण दे के समझाते ने, किन्ने शब्द ने। जिथे रब की गल करनी हो उथे मां प्यो दी गल्लां करके समझाते। भाई गुरुदास जी कहिंदे सरबण दे मां प्यो ने वह मोढ़िआं ते चुक्की फिरदा है, ते जे एक दिन बापू ने कहा ना वे पुत्रा साडे अन्नियां दी खातर तू अपनी जवानी क्यों खराब करदा है, ते सरबण कहिंदा बापू ही जना बोल ऐ मेरी मां जे तैनू नहीं दिसदा तेरे पुत्र नूं ते दिसदा है, तेरिया ही अखां ने, ये तेरिया ही अखां ने। पुत्र दियां अखां मां बाप दा सहारा बन जाण, कोई बिरला ही सरबण होंदा है।

बहुत सारे शब्द थोड़े वालों भी हुक्म हुए ने वो भी सुनाने ने फिर कभी समा मिले पूरा प्रकरण चार पांच दिन के दस सुनाते हैं कि भाई गुरदास जी की बार है इन सुनाते चार पांच दिन लगते ने फिर कभी समा मिले पूरा प्रकरण दस रहे थानू सुना आओ कि शब्द ऐसे सन जे घट सुने हो आओ हूँ सब शब्द ने तुम रोज सुनते हो कैसा राही भी दसदा गाए हुए ने तुम सारे मिल के जपना दसद्या का पूरा गाया हुआ प्रकरण तुम कैसा राही सुन सकते हो इंटरनेट तो अजकल बड़ा सौखा काम है दसद्या की साइट भी है दविंदर सिंह सोडी डॉट नैट वे भी तुम ये सुन सकते हो आओ जी हूँ थोड़े वालों जो हुक्म होए नहीं कृपा करो सारे मिल के जपे

मन माया में रम रहे हो, ममता मत पकड़। मन माया में रम रहे हो, निकसित नाहिन मीत, नानक मूर्त चितर जो छादित नाहिन पीत। गुरु तेग बहादुर साहब, देखो कहने एक तस्वीर असी लटकाने कंध नाल, एक पत्थर नू तराश तराश के तस्वीर विच उकरी जांदी, उकरी होई तराशी होई ते तंगी होई च फर्क है। पेंट कीती होई तस्वीर, पेंटिंग कीती होवे ते ओ भी रंग मारिया बुरश मारिया हट जाएगी। लटकाई होई तस्वीर भी आपां उतार लांगे, पर जेड़ी दीवार की पत्थर विच तराश के मूर्त बनाई है ओनू कोई नहीं वाह कर सकता, क्योंकि वह पत्थर दे विचों पैदा हुई है। महाराज कहने की करिए, मोह ममता इस तरह चंबड़ गई जिमें मानो के एक तस्वीर पत्थर विचों उकरी हुई दीवार नू छड़दी नहीं छड़दा अंदर। मन माया में रम रहो, निश्चित नाहिन मीत, नानक मूर्त चित्र जो छाड़त नाहिन पीत। अगली बेनती करा, एक गुरु ग्रंथ साहिब वचन आंदा गुरु अर्जुन देव का ममता बारे, गिल्ली गिल्ली रोडड़ी, रोडड़ी दे अर्थ गुर दी रोड़ी, जिन्हों आप ढेली भी कहने सा। ये असल च रोड़ी शब्द ढेली शब्द साढ़े बड़े पुराने ने, अपने खालसियां दे बोलबाले च इहनू गुड़ नहीं जे कहिंदे, सिर जोड़ कहिंदे। ये जिहड़ा गुड़ है जदों अपने रखदे सन घरां च, सौण भादों जो मीह पैंदा सी ना ते रखदे सन मिट्टी दे भांडियां मट्टा सी, उह ना अपने आप चिपचिपा हो जांदा सी, सराबा जिहा आ जाणा। हुण मक्खी दा मिठे नाल बड़ी मुहब्बत है, मोह की है। मक्खी आई, उन्हें चिप चिपे गुड़ ते उस कीड़े गुड़ ते ढेली उत्ते बैठ गई, तो उन्हें कहा भी यह कला मैं ही खावांगी, किसे होर नूं नहीं दसना। देखो ममता नूं पकड़ की लग गई, छोटिया छोटिया उहदियां लत्तां, गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने बरीक जिहियां तंदां लत्तां उहदियां, निक्के निक्के खंभ, उह गुड़ ते उत्ते बह गई, कहिंदी कल्ली खांगी, किसे नूं दसना भी नहीं। हुण किन्ना कु खा लैंदी, खा के रज गई। हुण मन ने कहा कला तेनू ही पता है, तू उड के फिर आ जाई। उडे किथे हुण, हुण गुड़ सी चीड़ा उन्नीआं दिन लत्तां तता लईआं, लत्तां पकड़ लईआं। ममता मोह इक पकड़ है, उन्हें मक्खी दीआं लत्तां ते खंभ पकड़ लए, हुण ओह उडना चाहुंदी है, उड नहीं सकदी। महाराज कहिंदे ने जिहड़ा जिंदगी दा आधार बनना सी, ममता ने ना को मारिया, मक्खी उहदे विच पई मर गई। इह वचन है गिल्ली गिल्ली रोडड़ी, भौंदी पापव आए, जो बैठे ते फासिया उभरे भाग। मथाए मैं तां अर्ज कीती, इहदा लालच नाल बड़ा संबंध है, क्योंकि माया ते मोह है। हजूर कहने वो सूरमे मोह तेनू किसने दित्या, हां मोह जदों प्रेम विच कन्वर्ट हुंदा है उदो दीवार टुटदी है, उदो आपा मिटदा है। पर मेरे सतगुरु ने इन्नी कृपा कीती, मैं इको बेनती करना, असी तां नहीं पर असी उस गुरु दे सिख जरूर कहुंदे आ जिन्हें मोह नूं नेड़े नहीं फटकन दिता। भंडारे भरे पर धन दे, कलगी वाला कहिंदा रोड़ दिओ सतलुज दे पाणी दे विच, तुहाडे सामने है सब कुछ रोड़ दिता, धन दा मोह नहीं। मेरा ख्याल है बंदा यह भी छड़ सकदा है, भी चलो जी छड़ दिता, पर कदी बंदे नूं औलाद दा मोह भुल सकदा? मैं सिर्फ एक बेनती कर लगा समझण लई, गुरु ने एक पकड़ नहीं रखी। ते मैं कहना मना एक दाई नूं कदी पुछ के देख, वह अपने हत्थां नाल किन्नियां बच्चियां नूं जन्म देंदी पर पकड़ किसे नाल नहीं रखदी। नवांदी सब नूं ए, पियांदी दुध सब नूं ए, लाड सब नूं लड़ांदी है, पर दाई कदी मोह ममता पा के नहीं बैठदी। प्यार होना फर्ज अदा करने चंगी गल है, तेन रुखे पांच ना लै जाना, असी मोह नहीं करते, फर्ज वो जरूरी है। पर जो समा आ बनिया धन भी गया, मैं कहना पुत्र दा मोह आ जंग लगा। जो असी देखने महाभारत का इको आवाज आई, अश्वत्थामा मारा गया। हुण अश्वत्थामा मारा गया, हाथी का नाम सी कुंचर। दुर्योधन नूं पता लगा कि अश्वत्थामा मारा गया, उहदे वी शब्द ते पुत्र सी द्रोणाचार्य दा, पता लगा अश्वत्थामा मारा गया, जिन्हें सब नूं